ये आकाशवाणी लय की आवाज़ है। सुबह के 7:32 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए श्रीमती ज़ेबुन निसा से प्रोग्राम रोशनी।

तालीमे निस्वा मर्द और औरत घड़ी के दो पाई की तरह है, परंदे के दो परों की तरह है। परंदा एक पर से परवास नहीं कर सकता। इस तरह औरत और मर्द का एक दूसरे के लिए लाजिम व मुलजिम है। दोनों का एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। इसलिए जिंदगी में मर्द को जो हुकूक है वही हुकूक औरत को भी हासिल है। आइन औरत मर्द दोनों को बराबर का हक देता है। इनमें एक बुनियादी हक तालीम है। अगर एक खानदान में मर्द तालीम याफ्ता है, औरत नाखावंदा है, तो वो खानदान समाजी और तालीमी तौर फल फूल नहीं सकता है। माहिरीन तालीम कहते हैं कि बच्चा का पहला मदरसा माँ की गोद है। बच्चा माँ से बहुत कुछ सीखता है। अगर माँ तालीम के जेवर से अरसता है तो बच्चा माँ की गोद में ही तालीम की अहमियत को समझ लेता है, जो आगे चलकर इसको स्कूल में काम आता है। पढ़ी लिखी माँ का खुशगवार असर सिर्फ बच्चे पर ही नहीं पड़ता बल्कि पूरे खानदान पर पड़ता है। अमूर खानदारी में बहुत सारे काम और बातें होती हैं, जिनमें खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, घर का निजाम व नसक चलाना, हिसाब किताब रखना, घर को साफ सुथरा रखना वगैरह शामिल है। एक पढ़ी लिखी माँ इन फराइज को अच्छी तरह सर अंजाम दे सकती है। किताब इंसान को हर मामले में रहबरी करती है। एक पढ़ी लिखी माँ किताबों से रहनुमा हासिल करती है। अमूर खानदारी सिर्फ घरेलू काम तक महदूद नहीं है बल्कि खानदान के दूसरे अफराद से कैसे बर्ताव करना चाहिए, मेहमानों से किस तरह पेश आने चाहिए, समाज में लोगों से कैसे मिलजुल रखना चाहिए। एक पढ़ी लिखी औरत ये

ठीक तरह समझ सकती है और आम जिंदगी में इसे निभा सकती है। तालीम की अहमियत सिर्फ खानदान तक महदूद नहीं होती बल्कि इसकी अफादियत समाज, अपने गांव, शहर और सारे मुल्क तक फैली है। इसलिए एक पढ़ी लिखी औरत समाज में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकती है जिसे समाज और कौम को फायदा है। इसलिए हुसूल इल्म सिर्फ मर्द के लिए लाजमी नहीं बल्कि औरत के लिए भी इतनी ही लाजमी है। अगर आधी आबादी जहालत और ला इल्मी के अंधेरे में है तो दुनिया कभी तरक्की हासिल नहीं कर सकती है। इसलिए आज दुनिया का हर मुल्क तालीमी निस्वा की तरफ जोर देता है। लड़कियों के लिए अलग तालीमी इदारे खोले गए हैं। अगर मखलूत तालीम दी जाती हो तो लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बराबर सहूलियत हासिल है। आज औरतों की एम्पावरमेंट की बहुत बातें की जाती हैं, जिसका मतलब औरतों को जिंदगी के मैदान में वो तमाम इख्तियार देते हैं जो मर्दों को हासिल है। अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं है तो वो अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मर्द और औरत दोनों में सलाहियतें हैं। तारीख गवाह है कि औरतों ने भी दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। औरतें साइंसदान, फलसफी, माहिर तालीम, कलमकार और आर्टिस्ट हो गुजरी हैं, जिन्होंने तारीख में अपने नाम हमेशा के लिए मजबूत किए हैं। ये तालीम की बरकत है। फी जमाने औरतें जिंदगी के हर मैदान में दाखिल हो रही हैं और अपना किरदार बखूबी अदा कर रही हैं। ये तालीम की बरकत है। औरतों को किसी किस्म की तालीम देनी चाहिए, माजी में ये सवाल किया जाता रहा है। इस सिलसिले में ये कहा जाता रहा है कि औरत जिस्मानी तौर कमजोर होती है, लेकिन आजकल ये तस्लीम किया जाता है कि औरत हर किस्म का फराइज सर अंजाम दे सकती है। फौज की तनु शाखों में औरत की खिदमत हासिल की जाती है। औरत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है। औरत माँ है, बहन है, बीवी है और बेटी है। तालीम के बगैर इसकी जात अधूरी है। यूनेस्को का ये नारा है कि एक मर्द को तालीम देने का मतलब ये है कि एक फर्द को तालीम दी जा रही है, जबकि एक औरत को तालीम देने का मतलब ये है कि एक खानदान को तालीम दी जा रही है।

अभी आप श्रीमती अजैबुन निसा से प्रोग्राम रोशनी सुन रहे थे। नाजे आकाशवाणी लेने चुनजिकताइन स्नातो छुसो तल्दुन तंग स्कर्मा सुनचु सोबदुन सोंतो कासत अंगजे दिरिंग इमेडिक्रम को निस्कोर सनाचात इन अधिक्रम तंगपेना लक्षांगतो छुसो तल्दुन तंग स्कर्मा जिप्चिका तत्पनांग शिंदिक्रम संचस लपोलेन दिरिंग दिक्रम बेना श्रीं टाशी पुलकाने सुंगुर कानिस फाते मातंग छपाने फुलकाने नाते शरीफ यंगस्तंग जुपेका स्तंजिन यंगडोलतंग पद्म छुंडोली फुलकाने छुसलो सनाजादिन आकाशवाणी दिल्ली ने ग्यारह का समाचार प्रभाग ज्ञातोस कर्मा चौहे का मॉर्निंग न्यूज ज्ञातों फेदे का ग्यारस बगुला रिनपोचे स्कूचे जदनाम डिग्रिम संचस लफलिन डिग्रिम फुलकान स्कूजाफ सुंगरूप नाम ग्याल यंग देस्तिंग ने पद्मा डोरकार तंग श्रीं नरजो में सलखाने लोरियांग सनाजादिन गुई का लदाख सनासुल गुदंग कर्मा स्ट्री का मोहम्मद शफी रिली तंग श्रीं डोल में सलखाने लोरिक सनाजादिन गुदंग फेदे का फिल्मी लोरिक संचस लफलिन ngato chuso tuning image to chunga sukpa fm gold delhi degrim kun sanchas lapalin ngime chuso chunga sika film me lorik chunga sang phede ga ncert chintak jat khane omang degrim me khak chikstong nip kya gupchu pa sana ja den akashwani delhi ne chika hindi nana sul chiktas kalma shi ka jina chiktas kalma shu ne chiktas kalma ngap chu sukpa mangmi kyo ton degrim me na film me lo sana ja den chiktas kalma ngap chu ka akashwani delhi ne urte nana sul ngime chuso ngi sika midday news ngistas kalma chu ka dopahar samachar ngistam phede kas ngol la sona mamo ya testing ne chiring gur metang thapan sal khane lorik sana jatin yang ngistas kal mangap chungai ka ladak sana na sol sanchez la phalin

0: Dagsang israng he tatpanang jindigrim sanatats ngaji akashwani leni jindig tangin nga to chuzo gyat zontong kasata akashwani dili ne samachar prabhat to morning news sanatsat.
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नीयारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
7: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
4: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता, संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
9: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
10: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of 7 big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
11: The International Big Cat Alliance IBCA summit was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum summit at a later date, it was decided that in order to ensure broad and active participation from all range

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Bu Akashwani le in kasatangi jarangai phunchuk wangmu nasna sulsana jat Shilon Narendra Modi dringelsa New Delhi nanga Cyprus Shijin Nikos Christodoulidis tangyampo jalzum anchachasinuk Shijin Christodoulidis dangelsa New Delhi a leptein pin gyalam shkalden tang yulilani junglam chinme lonpo jonba aje tamte namtu thangai ka khonga ka sujua jate nok Shijin tangyampo sponbo chenmogunilani thusde jigang gyagari zikskolash kote yote nok Shijin chulla Lams testing ne ibo skujaps Christo Dalaido si Gagarizik skor tampovo inok. Mirsis ngistung ishur sabdun tang dil te ladak sinanga self-enumeration it sirka gozuk sung te dulin yote inok. Mimang skunis inalde tse sumchu sukshik tsukpa sc.census.goe.inika jungre li portal lika tiwa joste yot khan gula lansal te self-enumeration it sirka gun chachang dupchuga jat goste inok. Inna tusla, mimang skunis mirsis ito lenche si sirka dulin yota chik cyber fraud suks chachas ingyan ka yot khan beka shang zachas kakchan inok mula zadin jik Director Census Operations, Ladakh Jammu Kashmir, Amit Sharma, Census Department is Thommi Gunla, Bank Account, Aadhaar, Pen Tang Credit Cardi Angtangs Tsukskunis Kola, Tiwa Chua Manuk Tepia, I Tsuks Chhan Na Te Namar La Khoi La Skuns La Shukji Da Chas La Jua Pula Jate Nok.
1: सेंसस के नाम पे बहुत ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स और साइबर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये 100% डिजिटल फॉर्मेट में पहली बार भारत में सेंसस होने जा रहा है तो प्लीज बी वेयर हमारा सेंसस डिपार्टमेंट किसी से कोई भी डिटेल नहीं मांगता चाहे वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है चाहे वो आधार है चाहे पैन है चाहे क्रेडिट कार्ड नंबर है और प्लीज अगर इसके नाम पर आपको कोई कॉल करता है या थ्रू वेबसाइट्स कोई बात करता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इवन हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आएंगे आपके घरों में तो उनका प्रॉपर आईडी चेक कीजिए और क्यूआर कोड रहता है उससे आप चेक कर लीजिए बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है सिर्फ उन्हीं लोगों से वो 33 सवाल जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में एचएलओ में है सिर्फ उन्हीं का उत्तर दीजिए या तो आप स्वगणना एससी में दे दीजिए या जब वो घर आएंगे तो उनको पूरा अपना डेटाबेस दे दीजिए
0: Le nanga IIT Jammu Satellite Campus Tukchas School La Ladakhs Ujungas De Tang IIT Jammu Niskwe Parla Chadun Jige Ka Nge Thup Chakhtakhs Zateno Gozugi Ka Ladakhsi Junshkes Gunla Civil Engineering Tang Artificial Intelligence Data Science Khakngi Si Nanga Campus Si Nanga Lubjung Zachis Jibshchot Innovation Entrepreneurship Tang Lasnes Kaps Thup Chaseno Chadun Nangjin Yongche Shanitu Si Nanga Kargili Nangang Residential Campus Gozug Chaseno Shichkong Junba Vike Saksini, Ladakh Sinanga Izuksi Gurji, Gozuk or Kongjas Lachoshkur Zajesboa, Shilon Narendra Modi, Tuji Chijua Zatenu, Yang Ujungas de Junsetal Dikpa, Ladakh Sajanga, Lobtukuni Pia, Zamling its Hatang Tunpe, Scabs Guntop Jukjas Lobtuk Gun, Shizun Chan Gurchukjas, Lotakchatiot Kanboa, Labazateno. Kasatai Kaptak Shiksanazat, Akashwani Le Nasul de Karinanga, Gejul Lilanika, Ladakh Sinanga Nasul Silkantang Gurkan, Yangna, News Reader, Kam Translator Rekona Sipia, Reltos Bagun, Lenchesinok, Reltos Bagunis, Junil Dates, Ashna, Sangsmun, Las, Yanjugun, Lelunchin Kangi. Nasus de Karato Jugoste, Nok Reltos Bagun, Graduate Zatkan, Ladakh Siskat, Sheskan. Nasul Silche CPS Kat Salpo Yungostenok in Nazosla, Radio Tang TV Nanga, Sarkot Vitsula, Las Chokani, Tongums Tang, Loglat Yangna Computer Rildani, Lobjung Yotkan Gunlas, Tangashkarte Salchasinok, Riltos Bagun, Rangung Issue Sakshikning, Apchuparla Yungostenok. Police Training Center PTC Stongsa Rika Pre-Promotional Course Jokana Police Kyoktong Guni Passing Out Parade Transportang Yampo Talik Jwa Zatenok Izzat Guinanga Ladakh Si Director General of Police DGP Mukesh Singh Skundur Sui Tsula Tuzat Zatenok Jongdari Idigrimbu Police Constable Gun Selection Grade Constable Head Constable Tang Assistant Sub Inspector Gunla Rangrangai Laskhari Nanga Sal Gunla Yashkit Tang Ches Tang Police Kyoktong Guni Nanga Lassir Shulche Secured a schedule like Kyonsa Sipia, Dalik Echostenok, Dums Kyoktong Gyanang Chonga Kaguna Ladakh Police Yanlak Susune in Kongunla Chushodi PTS Stong Sarika Jagmangap Chui Ringsla Jongdar Saltenok Itu Sungsha Salinjik DGP Mukesh Singh is Jongdar Lenkan Tang Jongdar Salkan Tsangmala Stoda Zadinjik Rangrang Laskari Nanga Diglam Tang Mimang Skun Tang Tunte Mimang Sipantok Sipia Policing Judges Kakchan in Kanbeka Shet Salazats.
2: प्रमोशन कोर्स जो है जो जैसा कि बताया गया है एक होलसम कोर्स डिजाइन किया गया जिसमें आपकी पर्सनल वेलबींग चाहे आपकी हेल्थ हो हेल्थ के फिटनेस हो इंडोर क्लासेस हो जो नए नए चीजें आई हैं BNS, BNSS ये सब चीजें हो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया ये कोर्स इसको और अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए iGOT जो भारत सरकार का एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं आपके लिए और हर तबके हर स्टेज के लिए कॉन्स्टेबलरी के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए एएसआई के लिए हेडकॉन्स्टेबल सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल है उनको भी उस फैसिलिटी का जो कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध है उसको भी यूटिलाइज किया गया ताकि आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल और बहुत अच्छे तरीके से हो सके ये अपने आप में लद्दाख पुलिस का एक पहला कोर्स है जो इतने बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया गया और अच्छी तरह से मुकम्मल तरीके से उसको कम्प्लीट किया गया
0: Mer Center Ladakh is Punbo Sunam Loto Sisha Zat Khan Nangjin Ladakh Si Yulka Gunina in Nalitsis Nishur Saruk Tsukpa Namla Pariga Tangches Pariga Tsubshes Pariga Lung Tsubs Pariga Charpa Babshes Tang Ri Tang Latun Pogunika Kachar Babshes Tsodiot Kantang Milditsis Nishur Saruk is Tingne Namlal Joks Lemo Gushes Tsodiot Kaniskola Shadazatenok Mer Center Ladakh is Diringi Diringi Me Tangtu Sadiskola Nasul Speltiot Khan Nangjin Lena Diringi Me Tot Mangshus Degree Celsius Chopgyat Tangi Me Tot Nyungshus degree Celsius Jitang Latkur Yang Kargili Nanga during Imetot Manshos degree Celsius Jurgutang Shuzur Latkur Yang Imetot Nunshos degree Celsius Gutang Shuzur Latkur Lushesit Suchos Teotenok IPL Cricket in Nangadang Sanla Gujarat Titans is Chennai Super Kings La Rangachu Kergune Pamkaltenok Idandur Tang Yampu Chennai Super Kings IPL Nistungishur Sarugi Dandurne Piloga Bingtenok IPL Cricket in Nanga during Sunrisers Hyderabad Tang Royal Challengers Bengaluru Niskupala Dandur Chachasenok Idandurbo Hyderabad in Nanga during Pito Chusul Duntang Pedika Guzuk Chachasenok Akashwani Legute Ladasina Nasul Gunimena Lanji Sanjasla Pulinjigyot, Ladaksi Nasul Nato Chuzot Gun, Yime Chuzot Nistanskarmangap Chunganga, Pito Chuzot Shnatang Pito Chuzot Duntanskarma Chungika Santubinjiginok in Natsuxla, Mimanskunis Chitsux Pelamikan Ladaksi Nasul Gun Santub Jesiotenok, Mimanskunis YouTubeika AIR News Lee, X Handelika AIR News Lee at the Red Persar Bartitang, Facebook Pejika AIR News Leeka, Akashwani Lee, Ladaksi Nasul Gun Santub Jesinok, Akashwani Lene Tanasul Ton.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट मुंबई भी जा चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS चतुर्थ के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और

0: के संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulides, in New Delhi today. Mr. Christodoulides arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He also visited Mumbai. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Veftes, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulides to India in his current capacity. Prime Minister Narendra Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwani Vaishnaw at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the RJ Kaur Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. The young medic was raped and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. A division bench comprising Justice

0: Services Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's Joint Director East will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. He was targeted in Gojra, Muzaffarabad, where he came out of his college yesterday morning. Burhan, alias Arjuman Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror attacks in Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him an opportunity to meet with ministers from the Quad nations. Punjab police has arrested a Pathankot resident for spying for Pakistan-based handlers by installing internet-linked CCTV camera on the Pathankot-Jammu National Highway 44. Pathankot SSP Daljinder Singh Dhillon told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. Its live feed was shared with Pakistan-based ISI handlers. Police is also looking for his three more accomplices. Union Home Minister Amit Shah today paid tributes to Raja Ram Mohan Roy on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said that through the establishment of the Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Roy awakened people against social superstitions. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और विश्व की पहली एआई फीचर फिल्म हेल ग्राइंड का कांस फिल्म महोत्सव में प्रीमियर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइडस मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने

0: कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ईरान के फारसी खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण ने एक नक्शा जारी किया है। इससे होर्मोज जलडमरू मध्य को लेकर गतिरोध कल और गहरा गया। इस नक्शे में उसने ईरानी तटों से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के फुजैरा और उम अल कुवैन बंदरगाहों तक फैले जलमार्ग के बड़े हिस्से पर अपना नियामक नियंत्रण होने का दावा किया। ईरानी संस्था ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को प्राधिकरण से पहले से अनुमति लेनी होगी। इस दावे की संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका पोलैंड में 5,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या 4,000 से घटाकर 3,000 कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप पोलैंड में अमरीकी सेना की तैनाती में अस्थायी देरी हुई है। मंत्रालय ने पोलैंड को अमरीका का आदर्श सहयोगी बताया। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में यूरोप में लगभग 80,000 अमरीकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से लगभग 10,000 सैनिक पोलैंड में हैं। इससे पहले अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि अगले 6 से 12 महीनों में जर्मनी से लगभग 5,000 अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा पर दबाव तेज करते हुए उसे एक विफल राष्ट्र और अमेरिका के लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा खतरा बताया। फ्लोरिडा और व्हाइट हाउस के अलग अलग संबोधन में दोनों अधिकारियों ने क्यूबा के प्रति कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया। साथ ही बातचीत के जरिए समझौते की संभावना भी खुली हुई है। ओवल ऑफिस में उदारीकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में क्यूबा से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका क्यूबा के लोगों और क्यूबा अमेरिका के लोगों को द्वीप से फिर से जोड़ने में मदद करना चाहता है। कुछ घंटे पहले विदेश मंत्री रूबियो ने भारत रवाना होने से पहले मियामी होमस्टेड हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं अधिक तीखा आकलन प्रस्तुत किया था। इसराइल सरकार ने गजा की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले सैकड़ों नौसैनिक दलों के सदस्य को रिहा कर दिया है और कुछ को निर्वासित किया है। कार्यकर्ताओं के साथ हुए इस बर्ताव पर विदेशों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते कई देशों ने इसराइल दूतों को तलब कर अपनी चिंताएं व्यक्त की। लगभग 420 कार्यकर्ता तुर्की जाने वाले विमानों से इसराइल से रवाना हुए और कल शाम इस्तांबुल उतरे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा।

0: और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग कर पहला अंतरिक्षयान बनाने का इतिहास रचा था। कॉन्स फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइंड नामक इस 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप हिग्सफील्ड एआई ने इस फिल्म का बुधवार को ट्रेलर भी जारी किया। फिल्म की कहानी देवी देवताओं और राक्षसों पर आधारित है। स्पेस एक्स ने टेक्सास के स्टार बेस से अपने नवीनतम और सबसे बड़े स्टारशिप V3 रॉकेट की बहुप्रतीक्षित परीक्षण उड़ान को लॉन्चिंग से ठीक 40 सेकंड पहले रद्द कर दिया। 407 फुट लंबा ये रॉकेट टेक्सास से अंतरिक्ष की लगभग आधी दूरी तय करने के लिए तैयार था, लेकिन मेक्सिकन सीमा के पास स्टार बेस स्थित बिल्कुल नए लॉन्च पैड में कुछ दिक्कतें आ गईं और कंपनी के पास समय खत्म हो गया। स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने बताया कि लॉन्च टावर आर्म को अपनी जगह पर रखने वाला हाइड्रोनिक पिन पीछे नहीं हटा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June postponed. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu Kashmir. India's Chandrayaan-3 lunar mission wins 2026 Goddard Astronautics Award by American Institute of Aeronautics and Astronautics. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And world's first AI feature film Hell Grind premieres at the Cannes Film Festival. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways Ajay Tamta at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works Alexis Vefedis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसपे आप अपनी पसंद के गीत हमें लिखकर भेज सकते हैं। और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से लकी श्रोता हैं जिनके गीत आज शामिल हो पाएंगे। वेल, नंबर कौन सा है बता दूं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9868687853 पर, यानी 9868686853, या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। तो बस लिख भेजिए हमें वो गीत, वो फिल्म का नाम जो आप सुनना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखिएगा। और फिलहाल शुरू करते हैं आपके संदेशों के साथ। तो हमारे दिल के मेल बॉक्स में पहुंच चुके हैं बहुत सारे ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस, जिनमें शामिल हैं कौन कौन, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा का मैसेज हमें मिला है। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी और प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का हमें मैसेज मिला। और हमें लिखा है मेरिट कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय डिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई ने। और इसके अलावा मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अबान और पूरा आबासी परिवार हमें मोहल्ला चोखुंडी बुलंदशहर से लिख रहे हैं। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी मामिका, वाणी थांदी का हमें पंजाब नवांशहर से मैसेज मिला। और हमें लिखा है किसने, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल और रक्षिता ने कल्पना ताई लोखंडे के साथ महाराष्ट्र, लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ महाराष्ट्र से। और ये मैसेज होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु का हमें मिला है। और हमें लिखा है किसने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान, पूजा परिहार का हमें मैसेज मिला। और मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार पुराना, और ये हमें लिख रहे हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप का मैसेज। और ये मैसेज हमें मिला है सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग का। और हमें लिखा किसने, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम का हमें मालियान सरधना मेरठ से मैसेज हमें पहुंचा। और हमारे पास नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू का मैसेज मिला। और हमें लिखा मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, आदिति वैभव ने, अदिति और वैभव ने, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे का मैसेज। और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने हमें जनकपुरी से लिखा है, दिल्ली से, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रीतेश और प्रज्ञेश संघई ने पूरे संघई परिवार के साथ परभणी से हमें मैसेज पहुंचाया। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय का मैसेज। और उग्रसेन यादव ने नई दिल्ली से हमें लिखा है, नबी हसन अबासी, शाहनवाज, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम और यशव का मैसेज हमें लिखा है, मारहरा दरवाजा एटा से, सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी, इशरत परवीन का हमें मैसेज मिला, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर का मैसेज, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज। और नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान सूफिया, काबली मारान से हमें मैसेज पहुंचा है। और हमें लिखा है सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जुन, नव्या बिजानिया ने हरियाणा सिरसा से। और ये मैसेज हमें मिला है पीतमपुरा से अनीता वर्मा का, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब हसन का सहारनपुर गांव कुम्हारहेड़ा से मैसेज। हमें लिखा है संतोष भाकरे, सुलेना, सुकन्या और सविता भाकरे ने, शाहजीनगर महाराष्ट्र से। और ये मैसेज अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, संजय, अरुण, पवन, संजीव, सुनील जैन और रजक,
रजन रजक, लालू, सोना, मुना, हनी, यश का मैसेज हमें पहुंचा है। मम्मी पापा के साथ सुन रहे हैं हमें, कहां से? शिवाजी चौक कटनी से। और रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी का हमें मैसेज पहुंचा है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। तो बाकी के मैसेजेस को जरूर शामिल करूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक गीत जो हमें कह रहा है कि बस अब प्ले कर दीजिए। ये गीत हमें फरमाइश की है मोहम्मद सईद अवासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे अवासी परिवार ने, अपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत वारिस फिल्म से आपके लिए। आवाजें लता जी और रफी साथ।

Akashwadi at 90. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स। 10:45 17 सेकंड हो चुके हैं और आपके और भी मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, तो इससे पहले कि इन्हें शामिल करूं, आपको बता दूं कि हमें किस किस ने लिखा है। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल ने, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने, और इसके अलावा हमारे पास श्रीपाल गोयल का बहादुरगढ़ हरियाणा से मैसेज पहुंचा है। उत्तम कुमार भगत ने हमें लिखा है, श्वेता भगत की सुधासु अर्णव आनंद सत्यमानंद के साथ, कहां से? झारखंड से। और पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का हमें मैसेज पहुंचा है। और मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमें लिख रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास पंकज मोहड अमरावती महाराष्ट्र से मैसेज भेज रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का हमें शांति नगर सोनीपत से मैसेज मिला। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और आयुषी गुप्ता का हमें मैसेज पहुंचा। और हमें लिखा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने, कालका से शुभचंद्र बजाज सहित साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हमें, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और डब्बू और बब्बू का मैसेज पहुंचा। और साथ ही हमें संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत ने कमल साहनी पिंगावाला चौक से हमें लिख रहे हैं। और इसके अलावा गांव चौहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार का मैसेज हमें मिला। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक का मैसेज। और विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा का कुमारी पूजा का मैसेज हमें मिला है। जाखौद राजस्थान से रेशमा बेगम, सलीम अख्तर कालीगढ़ से मैसेज। और भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का बेंगलुरु व्हाइटफील्ड से मैसेज। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी का मैसेज। और हमें लिखा है फुरकान, मोहम्मद फुरकान ने ग्राम

शिवपुरी सहारनपुर से मिला है। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष का हमें मैसेज गांधी चौक बाड़मेर से मिला। राम देवरा से दिनेश चौहान का मैसेज, डांगरी से बाबूराम जयपाल का मैसेज, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा का मैसेज। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। सुभाष प्रजापति का गुरुग्राम से मिला है हमें मैसेज। और गीतिका भानु कमला रानी का मैसेज हमें मिला है बोधराज के साथ उत्तम नगर दिल्ली से। दोबारा मैसेज मत भेजिए, ये अच्छी बात नहीं है। शमसुल कमर राही का, शाहीन फातिमा और अनु का मैसेज गंटुंडवाड़ा से हमें मिला है। और इसके अलावा हमारे पास किसका ये मैसेज है, नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। और हमें लिखा है प्रकाश गोगिया ने दिल्ली से। बहुत सारे मैसेजेस हैं, जरूर कोशिश रहेगी शामिल करने की, लेकिन फिलहाल अगला गीत शामिल करते हैं। और ये गीत हमें भेजा है किसने, हमें इसकी फरमाइश भेजी है धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार ने भोपालगढ़ राजस्थान से। तो ये रहा चांदनी फिल्म से आपके लिए ये खूबसूरत गीत।

आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होना है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य को अनेक नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री आज जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे और 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसमें पहले केवल 8 डिब्बे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोडे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोडे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वह जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजेय शक्ति का प्रमाण है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, देश को, भारत को आप जितना जानेंगे, आप इसे उतना ही नया और अलग पाएंगे। इसकी वजह है कि यहाँ के कोने कोने में ऐसे ऐसे कीमती हीरे छुपे हैं जिन्हें तलाश करने के लिए चाहिए पारखी और कौतूहल वाली नजर। आप किसी भी दिशा में चले जाएं, कुछ ना कुछ नायाब मिल ही जाए।

आएगा। खास बात यह भी है कि अगर हर मौसम की बात करें, किसी भी मौसम में आप कहीं जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो हर तरह के अलग अलग डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाइए, सुखद एहसास मिलेगा आपको। और अगर आप सर्दियों की बात करें तो सुनहरी रेत गर्माहट देती है। ऐसे में बरसात का हरा भरा रंग देखना हो तो है ना पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट। ये गुजरात से लेकर केरल तक देश के पश्चिमी सिरे पर पूरी आन बान और शान से अरब सागर से उठकर आए मेघों को अपने घने जंगलों से पुकारता है। ये मेघ भी मानसून के रूप में सिर्फ वेस्टर्न घाट को ही नहीं पूरे देश को सराबोर कर देते हैं। सापुतारा सहाद्री पर्वतमाला के बीच करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक शांत और मनोरम हिल स्टेशन है। किसी ने सच कहा है कि मंजिल से ज्यादा सफर सुहाना होता है, और ये बात आपको सापुतारा के रास्ते देखकर खुद महसूस हो जाएगी। अगर आप नेचर के बीच जाकर कुछ खूबसूरती का लुत्फ लेना चाहते हैं तो सापुतारा आपके इंतजार में है। पहुंच जाइए सापुतारा, क्योंकि ये जगह सचमुच आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है। बहुत खूबसूरत जगह है ये, और अगर हम ये कहें कि सापुतारा गुजरात की आंखों का तारा है तो ये सचमुच बिल्कुल सही बात है। आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको यकीनन ये महसूस होगा कि सापुतारा आज तक हमसे छूट कैसे गया, हमने इसे देखा क्यों नहीं। अभी भारत की अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे देश में ऐसी बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर हमने जाकर नहीं देखा है। हम बात करते हैं विदेशी यात्राओं की, लेकिन अगर हम इस जन्म में अपने देश को भी देखना शुरू करें तो शायद ये जन्म पूरा कम पड़ जाएगा। इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, क्यों हमें बाहर जाना है? पहले हम अपने देश को तो अच्छी तरह देख लें और उसके बाद कहीं और का प्लान करेंगे। फिलहाल मैं आपको ले चल रही हूँ सापुतारा। आपको यहाँ पर क्यों जाना चाहिए, क्या कुछ है यहाँ देखने के लिए, और क्यों मैंने आज सापुतारा को चुना है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ इस सफर में। 11:13:34 हो चुके हैं और फिलहाल तस्वीर के इस सफर में मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। तो चलिए आज चलते हैं आप और हम सापुतारा की यात्रा पर। फिलहाल शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, रफी साहब की आवाज में ये रहा।

दोस्तों आज हम चले हैं सापुतारा की सैर पर। सापुतारा की अगर बात करूं तो हिल स्टेशन डोंग जिले के जंगली क्षेत्र में ये स्थित है। यहाँ के जंगल मदहोश कर देने वाले हैं। टीक और बांस के पेड़ों से भरी ये वन संपदा कभी अंग्रेजों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। ब्रिटिश हुकूमत इन जंगलों पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन यहाँ के आदिवासी लोगों ने उनका सपना साकार नहीं होने दिया। तब ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के आदिवासी कबीले के मुख्य सरदार के साथ एक संधि की, जिसके एवज में ब्रिटिश हुकूमत इन जंगलों से कीमती टीकवुड हासिल कर सकी। ये जंगल घर है वर्ली, खुम्बी, भील और डांगी आदिवासी समाजों का। कहते हैं ये लोग 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान यहाँ आकर बसे और यहीं के होकर रह गए। खुद को जंगल पुत्र कहने वाला आदिवासी समाज इन जंगलों से अथाह स्नेह करता है, जिसका असर इनके जीवन के हर पहलू पर आप देख सकते हैं। इनके वाद्य यंत्र बांस के बने होते हैं। इनके लोक नृत्यों में बांस के बने मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर पर बने टैटू में भी पेड़ों की आकृति का उपयोग होता है। बहुत सारी चीजें हैं इस जगह के बारे में जानने को। गीतों के साथ साथ जुड़े रहिएगा इस सफर में।

सापुतारा की सैर पर चले हैं हम आज, जिसे लेक सिटी भी कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लेक सिटी भोपाल या उदयपुर को ही कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। देश में एक और लेक सिटी है सापुतारा। इसकी वजह यह है कि सापुतारा के बीचों बीच बनी एक सुंदर और मनोरम झील है, जो कि सैलानियों का खास आकर्षण है यहाँ पर। और इस झील में बोटिंग करने की सुविधा भी है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। बजट में यहाँ बोटिंग की सेवाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। यहीं लेक के नजदीक ही बहुत शांत और खूबसूरत बाग है, सापुतारा लेक गार्डन इसे कहा जाता है। और इसमें कई तरह के खूबसूरत पेड़ भी हैं, जिन पर पास के जंगल से आए सुंदर पक्षी भी अपना मनोरंजन करने पहुंच जाते हैं, जब यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं इस जगह की, जिसे हम सापुतारा कहते हैं, तो सापुतारा का मतलब है नागों का वास, ऐसी जगह जहां नाग बसते हैं। और ये बात सच भी है, डांग के जंगलों में नागों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। होली के मौके पर यहाँ के डांगी आदिवासी समाज सर्पगंगा नदी के तट पर इन नागों की पूजा करते हैं, और इसका प्रमाण यहाँ स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से भी मिलता है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर महाराज नागों के ईश्वर माने जाते हैं। आम दिनों की अपेक्षा नाग पंचमी के दिन इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। वैसे कहते हैं कि सापुतारा का इतिहास भगवान राम के समय से भी है। यहाँ के लोगों की माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने वनवास के दौरान लंबे समय तक यहाँ पर रुके थे। और अगर मैं बात करूं इस जगह के तापमान की, तो गर्मियों में सापुतारा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि सर्दियों में तापमान अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मानसून में यहां साल भर औसतन 2500 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, इसलिए यह हिल स्टेशन मानसून फेस्टिवल के लिए भी परफेक्ट माना जाता है। ये फेस्टिवल अगस्त से सितंबर के आसपास चलता है। इसमें आप नायाब कुदरती नजारों के साथ साथ मनोहारी गीत संगीत, लोक संस्कृति और एडवेंचरस एक्टिविटीज का भी पूरा आनंद ले सकते हैं। इनका बंदोबस्त गुजरात टूरिज्म द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ है घूमने के आकर्षण, जरूर बताऊंगी इस गीत के बाद। फिलहाल ये गीत सन ऑफ इंडिया फिल्म से लता जी की आवाज में और रफी साहब की आवाज में, ये रहा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो वहीं से पहले कि आगे कुछ बताऊं, एक चीज आपको याद दिला दूं कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन रहता है शाम 5:10 पर एक कहानी का, जिसे हम कहते हैं पानी पर लिखी कहानी। और आज की कहानी होगी गुमराह, जिसे लिखा है कुसुमलता ने। तो आप इस कहानी को जरूर सुनिएगा। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। शाम 5:10 पर कहानी गुमराह, पानी पर लिखी कहानी का ये खूबसूरत समय आपके लिए रहेगा, तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। फिलहाल हम चले हैं सापुतारा घूमने के लिए। तो सापुतारा में और क्या है घूमने को, ये बता दूं, इको पॉइंट है एक जगह, जो कि हिल स्टेशन भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ के इको पॉइंट से कर सकते हैं। इको पॉइंट वो जगह है जहाँ थोड़ा जोर से बोलने पर खुद की आवाज ही गूंज कर सुनाई देती है। ये जगह सापुतारा के पास माथेरन में स्थित है और इको पॉइंट सापुतारा के सबसे नजदीकी पर्यटन आकर्षणों में से एक माना जाता है। ये इको पॉइंट कई झरनों के साथ पर्यटकों को एक शानदार परिवेश देता है। यहाँ के नज़ारों की अगर बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ वातावरण काफी शांत है, तो थोड़ा एकांत समय अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। फॉरेस्ट लॉग हट है सापुतारा हिल स्टेशन में। आप खूबसूरत फॉरेस्ट लॉग हट आरामदायक सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ उसके लिए आप जा सकते हैं। यहाँ के लॉग हट यहाँ आने वाले सैलानियों के मध्य या बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अलग अलग जगह बने खूबसूरत फॉरेस्ट झोपड़ियां जहाँ के मेन आकर्षणों में से एक कही जा सकती हैं। सैलानियों में खासकर न्यूली वेज जो लोग होते हैं वो यहाँ पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, और ये झोपड़ियां काफी सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। इनकी वास्तुकला जो है वो देखने लायक है, जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सैलानियों के लिए जंगल के बीच इन झोपड़ियों में दिन और रात बिताने की परमिशन है, और यहाँ थोड़ा वक्त गुजार कर आप प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद जी भर कर ले सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हथगढ़ का किला है सापुतारा के प्राकृतिक आकर्षणों के साथ साथ आप यहाँ भी जा सकते हैं। ऐतिहासिक स्थल है ये, यहाँ भी आपको देखने के लिए काफी कुछ मिलेगा। ये किला 3600 फीट की ऊंचाई के साथ अपनी आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये भारत के प्राचीन किलों में से एक है। यहाँ से आप सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अद्भुत नजारों का आनंद ले सकते हैं, और चट्टानी इलाकों के जरिए से एक बहुत ही नैरो जो रास्ता है वो इस किले की तरफ जाता है, तो आप यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। अगर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो भी ये जगह आपके लिए खास है। और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जैसे कि लेक गार्डन है, यहाँ आप जा सकते हैं। सापुतारा झील है, आप इसे भी देख सकते हैं, एक पिकनिक स्पॉट

है ये। और इसके अलावा सप्तशृंगी देवी मंदिर है जहां आप जा सकते हैं। ये करीब 51 शक्तिपीठों में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। ये कहा जाता है कि ये देवी खुद पर्वत के मुख पर एक चट्टान पर प्रकट हुई थी। मंदिर 7 चोटियों से घिरा है और इसलिए नाम सप्तशृंगी माता के नाम से रखा गया है। अलग अलग हथियारों को पकड़े हुए 18 हाथों वाली देवी का चित्रण लगभग 10 फीट लंबा है और आप यहाँ पर देखेंगे कि मूर्ति को सिंदूर से लेप किया गया है, किया जाता है, जिसे इस क्षेत्र में काफी शुभ माना जाता है। तो आपको यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। आर्टिस्ट विलेज है एक सापुतारा में, आप यहाँ भी जा सकते हैं। और इस जगह की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे सुंदर जगह है। आर्टिस्ट गांव इस जगह की सबसे खूबसूरत प्लेस कही जा सकती है, जो शानदार सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को दिखाती है। गाँव की जो मूल निवासी जनजातियां हैं वो उनके जरिए ये तैयार की गई है, जिनमें पेंटिंग्स, मिट्टी के बर्तन, शिल्प, बांस शिल्प जैसी काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये सबसे अधिक मांग वाले सापुतारा पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे आमतौर पर स्कूल के बच्चों द्वारा देखने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। ये लोग देशी कलाकृतियों में भाग लेने के लिए भी काफी यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वंसदार नेशनल पार्क है जो आप देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको बहुत से जंगली जानवरों को देखने का मौका मिल सकता है, तेंदुए, लकड़बग्घे, जंगली सुअर, सांबर, 4 सींग वाले मृग और कई तरह के सरीसृप, पक्षी, बहुत सारे तरह की प्रजातियां। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पार्क में फूलों के पौधों की लगभग 450 के करीब प्रजातियां हैं, जैसे बांस की बात करें, दूध कोड, काकड़, तिमरू, हम्ब, कलाम, मोदत और हल्दू, सीसम आदि, ऐसे बहुत से वृक्ष आपको पौधे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कई आदिवासी आबादियों का घर भी है ये, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहें तो जो सबसे बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से मार्च के महीनों के दौरान है, इस जंगल में, इस जगह पे घूमने के लिए, इस राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए। सापुतारा पहुंचना कैसे है ये भी जान लेते हैं। सापुतारा का जो सबसे करीबी हवाई अड्डा है वो मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सापुतारा से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा भारत के कुछ प्रमुख शहरों और कुछ बाहरी देशों के साथ भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। हवाई अड्डे से आप बस ले सकते हैं या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टैक्सी भी आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इजिली आपको मिल जाएगा। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा नासिक राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जो लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर है। आप यहां से भी पहुंच सकते हैं अगर भारत के ही किसी हिस्से से आप यहां पहुंच रहे हैं। इस हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए वाघई रेलवे स्टेशन भी है, जो आपको बाय ट्रेन पहुंचने के लिए इजी है, इसलिए इस रेलवे स्टेशन के थ्रू भी आप यहां पहुंच सकते हैं। पहाड़ी शहर से लगभग 30 मील दूरी पर यह स्थित है और वाघई रेल हेड देश के विभिन्न कोनों से प्लेटफॉर्म पर आने वाली कई ट्रेनों का स्वागत करता है और लगभग 52 किलोमीटर दूरी पर है यह सापुतारा से। अगर आप सड़क से जाएं तो सापुतारा देश के अलग अलग शहरों और कई बाकी शहरों से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। कोई भी अपने बजट के अनुसार प्राइवेट पब्लिक बस आप लेकर यहां पहुंच सकते हैं। और सापुतारा सूरत, नासिक, अहमदाबाद जैसे आसपास के प्रमुख शहरों से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, तो आप चाहें तो इनके जरिए भी यहां पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से आपको एक गीत सुना देती हूं और अगर वक्त बचा तो सापुतारा के बारे में और भी कुछ आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगी। फिलहाल एक गीत मेरे महबूब फिल्म से।

0: दोस्तों, सापुतारा की ही संस्कृति में तो बहुत कुछ है जानने को, देखने को। अगर आप यहाँ कुछ स्वाद चखना चाहते हैं यहाँ का, तो क्योंकि गुजराती संस्कृति से प्रभावित है ये जगह और गुजरात में है, तो थेपला, ढोकला, खीचू, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप यहाँ पर चख सकते हैं। रागी से बनी हुई नाकली या फिर मकई और करी भात भी यहाँ पर बहुत लोगों को पसंद आता है, तो आप इसका टेस्ट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आदिवासी संग्रहालय जा सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ के म्यूजियम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ आभूषण, मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक वाद्य यंत्र, मुखौटे, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर रखे हैं। डांग जनजाति की सदियों पुरानी विरासत को ये यहाँ दिखाने के लिए म्यूजियम बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा में मानसून के दौरान मनाए जाने वाले मेघ मल्हार उत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मानसून में यहाँ पर पहुंच जाएं। और अगर आप यहाँ से कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, तो बांस की कलाकृतियां, वर्ली पेंटिंग, डांगी आदिवासी का हस्तशिल्प जिसमें की हाथ से बनी कढ़ाई वाले वस्त्र, लकड़ी के खिलौने, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप खरीद कर ला सकते हैं। शहद और जैविक उत्पाद भी आप यहां से खरीद सकते हैं, यहां के हनी बी सेंटर से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, शहद खरीद कर ला सकते हैं। हर्बल उत्पाद और अलग अलग तरह के पौधों की कलमें आप खरीद कर ला सकते हैं, जिन्हें आप अपने घर में आकर लगा सकते हैं और अपने घर को भी हरा भरा कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट विलेज आप जा सकते हैं, जहां से आप वर्ली पेंटिंग, हस्तशिल्प और बांस के उत्पाद खरीद कर ला सकते हैं। और अगर मैं कहूं तो इस जगह से बहुत सी कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह भी आपको उचित दाम पर मिल जाएंगे, तो आप इन्हें भी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, ताकि आपको सापुतारा की यादें हमेशा ताजी रहें। वेल, अभी तो क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है कि मैं आपसे बातें करूं, लेकिन अब इसी के साथ आपसे लूंगी इस सफर से विदा। मैं आपकी दोस्त आर्जे रेखा क्रिस्टल वॉइस फिर किसी रोज किसी और सफर में आपसे जरूर मिलूंगी। आज की तस्वीर में इतना ही, लेकिन 24/7 FM गोल्ड आपके साथ है, तो सुनते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जुड़े रहिए आपके पसंदीदा चैनल के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं आपकी दोस्त लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा, और अब वक्त है हिंदी अंग्रेजी समाचारों का, उसके बाद बहुत कुछ है, जुड़े रहिएगा।
1: मीडियम वेव किलो हर्ट्ज 6.5 MHz यंग मीटर्स निबिया गैप्सितांग शुजुर्गु यंग एफएम मेगाहर्ट्ज ग्यादांग चिकतांग शुजुर चिकिका ngaji आकाशवाणी लेने जिंजिक ताइन निमे छुसोत चुगनिस छादु कासाता छुसोत चुगनिस दा फेत्सुपा फिल्म लोरिक सांचेस लापुलेन एना डिग्रे मगोजुक पेका कुमार सानु कविता कृष्णा मूर्ति तांग ठोपा गुने सलकाने हम दिल दे चुके सनम फिल्म लुसानाजा लूर सुमखन महबूब यंग लुयंग श्रीकान इस्माइल दरबार

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
2: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
2: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
2: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
2: जी
1: हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
2: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
2: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
2: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
2: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
3: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना। कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान हैं।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ।

0: ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: पाजी सुनिए।
5: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
5: ये लो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ। मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे इसको भी डालो।
5: हाँ,
4: ये देखो
5: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
5: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। अब कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
5: हाँ।
4: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
5: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
6: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
7: हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
8: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
1: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
2: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
9: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
2: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधान

0: मेहरबानी बरत कर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें, जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: दक्षिणी जरंगे NCERT चिंदक जात कने डिग्री उमंग खाप अचिक्स्तों गिप्यातं गुपचुपा सानाजात्स।

0: ngaji akashwani line jun chik tai nime chu chot chik chadu kasata akashwani de line smulla hindi yang testing ne angrezi na nasul asana ja
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री

0: तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
1: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
2: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.T. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The seats are vacated by Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Ajit Pawar and AIADMK MP CV Shanmugam, who were recently elected to the state.

जय हिंद फौज भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म से इस गीत को सोनू निगम की आवाज़ में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में हेलो ब्रदर फिल्म से। इस गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण को दिल है तुम्हारा फिल्म में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फौजी भाइयों के लिए ये फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे चोरी चोरी छुपके छुपके फिल्म से गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। अगला गीत लीजिए, सुनिए दिल का रिश्ता फिल्म से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाइयों सुनेंगे गुलाम फिल्म से इस गीत को कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

0: हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। दिन के 1:50 हुआ जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें, मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को दोगुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नज़र कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। भारत और कुब्रुस ने आज नई दिल्ली में मुख्तलिफ मैदानों में एक दूसरे के साथ बहुत से मुआहदे किए हैं, जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का क्याम, इख्तरा और टेक्नोलॉजी, आला तालीम और तहकीक और सकाफती तआवुन शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शोबों में दो तरफा तआवुन को मुस्तहकम बनाने के बारे में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कसीर मुल्की फोरमों में तआवुन समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के मामलात पर तबादले ख्याल किया। अपने मुश्तरका बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान दोस्ती न सिर्फ मजबूत है बल्कि मुस्तकबिल में ताबनाक भी है। उन्होंने कहा कि पिछली दहाई में कुब्रुस से भारत में सरमायाकारी तकरीबन 2 गुना हुई है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती माहदे के बाद बहुत से नए इम्कानात पैदा हुए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को एक बार फिर 2 गुना करना है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: कुब्रुस के सदर जनाब निकोस ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन भारत ताल्लुकात में पिछले साल काफी वसअत आई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल इन ताल्लुकात में वजीर आजम मोदी के कुब्रुस के दौरे से शराकत दारी की रफ्तार में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। कुब्रुस के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और कुब्रुस के दरमियान करीबी और देरीना शराकत दारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान अगले साल फरवरी में सिफारती ताल्लुकात के 65 साल पूरे होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत पूरी सरहद को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी। आज नई दिल्ली में BSF के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में ड्रोन, रडार, कैमरे और दीगर तकनीकी वसाइल शामिल किए जाएंगे। उन्होंने ये काम एक ऐसी सरहद के हिफाजती फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है जिसे पार करना मुमकिन न हो, जिसके लिए स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत आने वाले साल में सरहदी हिफाजती फोर्स के सलामती निज़ाम में हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।
2: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बैन अलाक्वामी सरहदों की सिक्योरिटी को चैलेंजों से निमटने के एक अलहदा काम के बजाय वसीतर इलाकाई जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जनाब शाह ने कहा कि कई तरह के चैलेंजों और दुश्वार हालात के बावजूद बीएसएफ ने लगातार मुल्क का नाम रोशन किया है। जनाब अमित शाह ने दरअंदाजी, मनुष्यात की स्मगलिंग, जाली करेंसी के चलन और हथियारों और नशावर अद्वियात की स्मगलिंग समेत उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात को उजागर किया। वजीर दाखिला ने ज्यादा मरबूत और जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया और रियासती पुलिस, मरकजी मुसल्ला फोर्सेज, सुराग रसा एजेंसियों और मकामी इंतजामिया के माबेन और ज्यादा तालमेल की जरूरत भी उजागर की। इंतखाबी कमीशन ने आज 10 रियासतों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। साबिक वजीर आजम एच डी देवगौड़ा, मरकजी वजरा जॉर्ज क्यूरिन और रवनीत सिंह वो अरकान हैं जिनके मुद्दतकार अगले महीने खत्म हो रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट खाली हो जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में 1 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 18 जून को पोलिंग होगी। उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। कमीशन ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा के जिमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया है। ये सीटें महाराष्ट्र की नायब वजीर आला सुनेत्रा अजीत पवार और AIADMK के रुकन पार्लियामेंट CV शनमुगम के हालिया रियासती असेंबली इंतखाबात में मुंतखब होने के बाद खाली हो गई हैं। इन सीटों के लिए भी 18 जून को ही इंतखाबात कराए जाएंगे। केरलम में 7 मरतबा के कांग्रेस MLA तिरुवंचूर राधा कृष्णन को एक तारीखी सहरुखी मुकाबले में 16वीं केरलम कानून साज असेंबली का स्पीकर चुन लिया गया है। पहली बार ऐसा है कि इस चुनाव में बरसर इकतदार UDF बाएं बाजू और BJP की क्यादत वाले NDA के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बरसर इकतदार UDF उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 140 रुकनी असेंबली में 101 वोटों से स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। अपोजिशन LDF उम्मीदवार AC महीउद्दीन ने 65 वोट जबकि BJP उम्मीदवार BB गोपागोपाल ने 3 वोट हासिल किए। ऐसा पहली बार है कि BJP ने केरलम में स्पीकर का चुनाव लड़ा हो। नायब स्पीकर के लिए इंतखाब 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज UAPA केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। इस केस का ताल्लुक 2020 के शिमाल मशरकी दिल्ली के फसादात के पीछे मुबैना एक बड़ी साजिश से है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की एक डिवीजन बेंच ने उमर खालिद की रिहाई के लिए सख्त शराइत के साथ 1 से 3 जून तक की इजाजत दी है। उमर खालिद ने 15 दिन की उबूरी जमानत चाही थी ताकि वो अपने मरहूम चचा के चहलुम की रसूम में शिरकत कर सके और अपनी वालिदा के ऑपरेशन से पहले और बाद में उनकी निगहदाश्त कर सके। अदालत ने हिदायत दी कि खालिद को सिर्फ एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करना होगा और तफ्तीशी अफसर के साथ लगातार रابطे में रहना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सरबरा लालू प्रसाद यादव, उनके कुनबे के अफराद और दीगर के खिलाफ इल्जाम तय करने के बारे में अपना फैसला 9 जून तक मुलतवी कर दिया है। इस केस का ताल्लुक IRCTC होटल घोटाले में मुबैना तौर पर काले धन को जायज बनाने से है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्म लहर चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ 2 तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को 2 गुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नज़र कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night, chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans. Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट

0: इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को

0: 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Medium wave kilohertz achik stongap chungaksum, yang na meters ni biaga chu gabji tang shuzurku. Yang FM megahertz gyadang chik tang shuzur chigiga, ngaji akashwani lenejmen chik tain. Nime chutsot ngins tang pet chaduk, kasata chutsot ngins tang skalma ngap chunganga chukpa, ladak selurik sanchis lapulen. Ina tsangme sangsmul la sonam angme salka nejung lurik sanazat.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इजुंग लुगुन संकलन गेसला आकाशवाणी लेने संचिसला फुलिंजिक ताइन।

0: ngaji akashwani lene join jik tangin pito chu chot nga nang skarma shnga charu kasata telephone gu te nga gachat kan e dikrim hello farmaish sanajat dikrim phulkan chiring koncho
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप कौन बोल रहे हैं सर?
2: सर नमस्कार, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था कोलार रोड भोपाल से।
1: ओ नमस्ते सर, कैसे हो सर आप?
2: मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। और आप सुनाओ, आप कैसे हो सर? और गर्मी बहुत तेज है यहाँ पे भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश राजधानी में। जी
1: अच्छा अच्छा जी, हम भी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हमारे लद्दाख में तो अभी मौसम बहुत सुहानी है और हल्की हल्की पहाड़ों में बर्फ भी पड़ रही है जी।
2: अच्छा, बिल्कुल ठंडा मौसम होगा बिल्कुल, मतलब यूं मान के चलिए कि आपने हमको ऐसी बात सुनाई है कि वो बिल्कुल हमको भी ठंडा ठंडा महसूस होने लगा है।
1: जी जी जी जी, क्या करते हैं आप वैसे?
2: अपने ये ड्राई क्लीनिंग का काम है सर, ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री
1: ऑफिस
2: पे काम वाम करते हैं और इसके माध्यम से आपके लेह लद्दाख के हम प्रोग्राम बराबर सुनते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा आप हमें हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। जी
2: जी बिल्कुल, हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं आपके सर, जो भी हिंदी में प्रोग्राम आते हैं बिल्कुल बराबर सुनते हैं। और आपके जो आवाज जो लैंग्वेज है वो उसमें भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कुछ प्रोग्राम।
1: ओ, बहुत बढ़िया, आप लद्दाखी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स भी सुनते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, सुन लेते हैं सर और अंदाज लगा लेते हैं क्या बोल रहे हो आप। जी
1: जी जी जी, तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: तो आज प्रोग्राम की शुरुआत हो सकता है तो आप गणेश जी भगवान के नाम से ले शुरुआत करते हैं, तो अग्निपथ का सुनना चाहेंगे, देवा श्री गणेशा देवा।
1: जी जरूर जरूर, अग्निपथ मूवर से जय गणेशा सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप अपने किसी दोस्तों का नाम लेना चाहोगे?
2: जी हाँ, हमारे दोस्त है लोकेंद्र वर्मा जी और भी बहुत सारे दोस्त है हमारे, वो नाम लेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा सर, और आज ये आपके लिए भी रहेगा बिल्कुल।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आप आकाशवाणी ले से जुड़ने के लिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, तब तक के लिए आपका ये सॉन्ग हम जरूर प्ले करेंगे।
2: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: जी भगवान जी, कैसे हैं आप?
1: जी हाँ सर, हम आकाशवाणी लय को सुनते हैं, हमेशा डीटीएच पे सुनते हैं सर। अच्छे हैं सर, काफी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री गर्मी हमारे इधर हो जाती है सर दिन में।
0: अच्छा जी जी, आजकल आप क्या करते हैं वैसे?
1: सर हम खेती किसानी करते हैं और खेती के काम में अभी व्यस्त हैं थोड़ा सा।
0: जी आजकल आपके फसलों का, कौन सी फसलों का आजकल टाइम है सर?
1: जी सर, अभी तो हमारी खेतों की हकाई जुताई हो रही है सर
0: जी,
1: और अभी खेत खाली हैं, खेतों में कुछ बोया नहीं है सर।
0: जी जी, आप कौन सी फसल का अभी तैयारी कर रहे हो इसके बाद फिर? जी
1: सर, हमारी जैसी बरसात चालू होगी ना तो सर हम सोयाबीन और मक्का की फसल बोएंगे सर।
0: अच्छा अच्छा, सोयाबीन और मक्के की सीजन स्टार्ट हो गया आपकी, बहुत बढ़िया।
1: हाँ सर, नहीं सर अभी जैसे बरसात चालू होगी इसके बाद वो आएगा सर, अभी तो गर्मी पड़ रही है हमारे इधर।
0: जी जी जी, अभी तो मध्य भारत में बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: जी सर
0: जी, तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सर फिल्म का नाम है मुस्कान और गाने के बोल है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती।
0: जी जी जी,
1: और सर कुछ दोस्तों को याद करना चाहेंगे सर?
0: जी जरूर जरूर, आप उनका नाम ले सकते हैं।
1: जी सर, मांगीलाल चंदेल जी हैं, लक्ष्मण सिंह चायवाले, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, गंगाधर जी, केसर सिंह राजपूत जी हैं, और हमारे गंगाधर जी के बाद है त्रिपुरा से बहन संगीता देवना जी, आशुतोष देवना जी, अविनाश तेली जी हैं, पूनम दीदी हैं कानपुर से, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर।
0: जी जरूर जरूर, आपका आपका ये मुस्कान फिल्म का गाना जरूर सुनाया जाएगा।
1: प्रजापति जी हैं वायां
0: आकाशवाणी ले में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए आगे के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर जी,
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: जी सर, मेरा नाम पूर्ण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप सर?
1: बस सर बढ़िया हूँ, आप सुनाओ कैसा मौसम हो रहा है आपकी तरफ?
0: जी हमें बहुत बढ़िया हूँ, लद्दाख में अभी बहुत ही सुहानी मौसम है जी।
1: अभी कितना टेम्परेचर हो रहा है सर? हमारे यहाँ तो 47 चल रहा है राजस्थान में।
0: जी जी, राजस्थान और आसपास के इलाकों में बहुत गर्मी पड़ रही है, वो हमें भी सुनने में मिलता है, पर लद्दाख में तो अभी भी हमारी चोटियों में हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है जी।
1: अच्छा, बर्फ अभी भी बर्फ का आनंद ले रहे हैं आप?
0: जी जी जी
1: जी जी इधर हम गर्मी का आनंद ले रहे हैं सर, बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत है, मान लो इतनी धूप है बहुत ज्यादा।
0: सर आप क्या करते हैं वैसे?
1: सर हम खेती बाड़ी करते हैं और अभी तो खाली खेत है और 1-1.5 महीना बाद में बाजरा की फसल बोएंगे सर।
0: आप राजस्थान के कौन सी जिले से ताल्लुक रखते हैं?
1: जी मैं जयपुर जिला से रखता हूँ और बुगला गांव है।
0: अच्छा आप जयपुर से हो, तो सर आज के कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप?
1: जी सर, फिल्म का नाम है अनाड़ी
0: जी।
1: और नई वाली अनाड़ी है और उसमें गाने के बोल है, तूने है नजारे दिल तुझको पुकारे जाने जाने जा, ये गाना है।
0: जी जरूर जरूर, इस गाने के साथ आप आज के कार्यक्रम में अपने दोस्तों के नाम लेना चाहोगे?
1: जी सबसे पहले तो आपको और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और हमारे लिए जो कार्यक्रम बेच रहे हैं घर बैठे सुनते हैं आपका कार्यक्रम, तो उनके लिए जो कार्यक्रम इतनी मेहनत से हमारे लिए सजा के लाते हैं तो उनके लिए
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है और जितने कॉलर लाइव का आकाशवाणी ले लद्दाख सुनने वालों के लिए।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए आगे के कार्यक्रम में भी।
1: थैंक यू सर।

0: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप?
0: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर। बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आकाशवाणी लेह लद्दाख से प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं सर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोकेश जी, क्या करते हैं वैसे आप?
0: सर मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा, मतलब संवारने का बिजनेस है मेरा, मतलब सबको तैयार करने का, खूबसूरत दिखाने का।
1: अच्छा, तो आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं?
0: बिल्कुल सर जी, ये तो मेरा हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस करीब 40 सालों से ज्यादा हो गए हैं मुझे करते हुए।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: इसी बिजनेस को कर रहा हूँ मैं
1: जी,
0: मतलब मेरे पिताजी के समय से कर रहा हूँ मैं
1: जी
0: बिजनेस को करते हुए, मतलब इतने साल हो गए हैं, जब से ही मतलब रेडियो की दुनिया से जुड़े हुए हैं, संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं और संगीत की दुनिया में ही रहते हैं
1: जी। अपने सैलून की बिजनेस के साथ साथ आपको रेडियो सुनना बहुत पसंद है?
0: हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत पसंद है मुझे रेडियो, क्योंकि रेडियो सुनते रहते हैं दुकान में, अपना काम करते रहते हैं और रेडियो पर विशेष जानकारियां भी मिल जाती है उपलब्ध, क्योंकि आज कौन सा दिन है, क्या डे है, किस प्रकार की मतलब गतिविधियां देश में चल रही है, उस प्रकार की सभी जानकारी मतलब लग जाती है रेडियो के माध्यम से।
1: जी जी, यही आकाशवाणी की खूबसूरती है कि एक में इंसान का मनोरंजन भी हो जाता है, उसके साथ साथ दिन दुनिया की सारी गतिविधियों का भी पता चलता है।
0: जी, गतिविधियों का भी मालूम हो जाता है और फिर आप जैसे प्रस्तुतकर्ता जब अपने लाजवाब महकती हुई खूबसूरत आवाज में कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं तो वो भी लाजवाब रहता है।
1: वो बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए जी। आप फिर गानों के साथ साथ फिर आपको और क्या पसंद है आपको?
0: ऐसे मुझे सर पसंद है, जैसे गाने के अलावा मैं सोशल वर्किंग का भी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, किसी की मदद कर सकूँ।
1: बहुत बढ़िया।
0: जैसे मेरा सैलून है नानाखेड़ा बस स्टैंड पर
1: जी, जी।
0: तो उज्जैन एक महाकालेश्वर जी की पावन धरती भी है, यह
1: एक धार्मिक स्थल है। जी जी
0: जी, तो यहाँ पर बस यात्री जब बाहर से कभी उज्जैन आते हैं तो मेरे सैलून में भी मतलब काम के लिए आते हैं, जैसे कि उनको तैयार होना रहता है या हेयर कटिंग या सैलून का काम रहता है
1: जी,
0: तो वो आकर पहला सवाल यही करते हैं कि यहाँ से महाकालेश्वर कितनी दूर है और उज्जैन में और कौन कौन से मंदिर दर्शन करने लायक हैं
1: जी।
0: तो मैं उनको उज्जैन का पूरा दर्शन के बारे में भी बता देता हूँ और कितना दूर मंदिर है, क्या साधन उपलब्ध रहेंगे, क्या क्या सुविधाएं रहेगी, ये सब मैं मेरी तरफ से उनको बता देता हूँ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक टूरिस्ट गाइड की तरह आप उनको गाइड भी करते हो, सुन के बहुत अच्छा लगा। जी जी,
0: इतने सालों से रह रहे हैं उज्जैन के अंदर तो सभी धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी भी है और वहाँ के इतिहास के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है सर।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। आपके उज्जैन में कौन से महीने में अधिकतर श्रद्धालु आते हैं?
0: श्रद्धालु तो सर ये जैसे पर्यटन स्थल है तो यहाँ पर पूरे साल ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, करीब 1 लाख से ज्यादा यात्री प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं। और खास करके सावन महीना जब आता है या शिवरात्रि आती है, जब ये दर्शनार्थी की तादाद करीब 5 लाख करीब के लगभग हो जाती है।
1: तो आपके वहाँ पे आपके हिसाब से कौन से राज्य से अधिकतर लोग आते हैं?
0: नहीं, सभी राज्य से आते हैं, जो महाराष्ट्र से, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, देश भर के अनेक राज्यों से सभी जो तीर्थयात्री है आते हैं, वो देश विदेश से भी आते हैं वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: जी सर जी, ये पुराना फिल्म का गीत है, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी,
0: जिसका गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, ऐसा गीत है।
1: जी जी, जरूर जरूर। आज के कार्यक्रम में आपके किसी दोस्तों का नाम लेना चाहोगे?
0: हाँ जी, हमारे दोस्त है शारदा प्रसाद जी हैं, राम बाबू मालवी जी हैं, हमारे भोपाल से हैं, सुनील झा जी हैं, ये भी भोपाल से हैं, करणवीर पॉल जी हैं और सुनील जी हैं, हमारे एक जालंधर पंजाब के सोनू जी बोलते हैं हम उनको, गुणवत भाई हैं, धीरज भाई हैं, अफजल भाई जी हैं, गंगाराम जी हैं और तुकाराम जाधव जी हैं।
1: बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने के लिए, ऐसे हमारे साथ आकाशवाणी ले के साथ जुड़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: जी राकेश जी नमस्ते, कैसे हो आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, इस वक्त जो है ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं।
0: जी जी जी, आप प्रॉपर शिमला से हो सर?
1: जी मैं प्रॉपर शिमला से, और मेरा तहसील पता है कोटखाई।
0: कोटखाई से? जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: जी जी
0: जी राकेश जी, क्या करते हैं वैसे आप?
1: हम तो सेब की बागवानी करते हैं।
0: अच्छा, आपके पास सेब के बगीचे हैं?
1: हाँ, जो जो पूरे देश में जो सेब के जो बागान होते हैं वो पूरे पूरे शिमला में नहीं, सब कोटखाई से आते हैं हमारे जो जो सेब और नाशपाती वगैरह।
0: बहुत बढ़िया, आपके कोटखाई रोडू साइड और किन्नौर तो पूरे सेब के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
1: जी जी जी, रोडू साइड नहीं, जुब्बल जुब्बल साइड, मतलब रोडू जुब्बल कोटखाई ये एक ही स्थान में पड़ता है।
0: जी जी जी, तो आजकल तो अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं सर आजकल?
1: अभी तो सोयाबीन लगा रखा है।
0: अच्छा जी
1: जी जी जी जी
0: जी, फिर आप बागवानी के साथ साथ और क्या करना पसंद है आपको?
1: और बस आकाशवाणी पे, विभिन्न आकाशवाणी पे जुड़ना, और आप प्रोग्राम सुनना है, और सभी प्रोग्राम पे जुड़ना है। अच्छा, आप आए हैं कभी कोटखाई क्षेत्र में?
0: जी जी, मैं लाल पानी स्कूल से पढ़ा हूँ।
1: अच्छा लाल पानी, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: आपको पता है लाल पानी स्कूल बस स्टैंड के नीचे है?
1: जी जी जी जी जी जी
0: जी, मैंने वहीं से पढ़ाई की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी जी
0: जी जी।
1: तो हम आकाशवाणी विभिन्न केंद्रों पे जुड़े रहते हैं, जितनी भी आकाशवाणी केंद्र है सभी पे जुड़ते रहते हैं, आकाशवाणी शिमला के साथ साथ सभी आकाशवाणी के, और आपका जो लेह का प्रोग्राम है इसको हम जरूर सुनते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राकेश जी। फिर आपको घूमना पसंद है कि नहीं?
1: घूमना तो पसंद है, घूमना तो अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऐसे मौसम में, जब मौसम सुहाना होता है तो घूमना पसंद आता है।
0: जी जी, आपने शिमला या हिमाचल को छोड़ के आप कहाँ कहाँ घूमे अभी तक?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी अपने क्षेत्र में घूमा, लेकिन हिमाचल से बाहर अभी तक नहीं गया, और किसी कारणवश नहीं जा पाया।
0: अच्छा अच्छा, ठीक ठीक राकेश जी। तो आजकल शिमला में मौसम सुहावनी हो गई, गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है कि नहीं?
1: जी गर्मी तो स्टार्ट हो रही है।
0: जी राकेश जी, आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज मुझे गाना सुनना है अंदाज मूवी का।
0: जी,
1: उसमें एक गाना कितना पागल दिल है।
0: और इस गाने के साथ साथ अपने किसी दोस्तों का नाम लेना चाहोगे?
1: जी,

0: रेडियो दोस्त है पूरन वर्मा, अविनाश तेली, भगवान सिंह परमार और मांगी लाल चंदेल और मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, गजराज लोधी और तमाम सुनने वाले श्रोता जो कॉलर अभी आपके साथ जुड़ेंगे, सबके साथ ये गाना सुनना चाहता हूँ।
1: जी जी राकेश जी, आकाशवाणी ले में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमेशा जुड़ते रहिए हमारे साथ।
0: जी जी धन्यवाद।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिंदरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंदर जी नमस्ते, कैसे हो आप?
1: ठीक हो सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। बहुत देर से प्रयास कर रहा था, लग गया सर, आज मेरा पहला कॉल लगा है आकाशवाणी केंद्र।
0: जी इंदर जी, आप क्या करते हैं वैसे?
1: मैं सर एसोसिएशन में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ सर। और आज मेरा ड्यूटी नहीं था, लेकिन ड्यूटी पीरियड में ही मेरे को कुछ जरूरी काम से ट्रेनिंग में भेजा गया एक दिन के लिए
0: जी।
1: लेकिन उसका भी हाजिरी बनता है, उसका भी वो जो समझ रहे ड्यूटी है।
0: बहुत बढ़िया, तो आप कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड में काम करते हो?
1: जी सर।
0: तो अपनी काम के साथ साथ आपको और क्या करना पसंद है इंदर जी?
1: मेरे को सर ये काम के साथ में रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूँ सर, लाइव में जुड़ता हूँ, ईमेल में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, कई केंद्रों का कार्यक्रम भी सुनता हूँ। और मेरे को सबसे ज्यादा ये मोबाइल का ऐप का कार्यक्रम में सुनना और रिकॉर्डिंग करना, बातचीत बढ़िया लगता है सर, जानकारी मिलता है, जानकारी भी देता हूँ। अभी गर्मी का मौसम बढ़ गया है सर, गर्मी तो लोगों से आग्रह करूंगा कि इस मौसम में सेहत का विशेष ध्यान दें, गर्मी लू से बचे, खूब पानी पिए, खूब सलाद और ये खीरा ककड़ी कलिंदर जरूर खाएं, और जानवरों को धूप में ना बांधें सर, और कम से कम पानी की भी बचत करें। जानवर लोग आते हैं तो उनको भी दाना पानी दें सर, उनको नहलाएं, इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे अहम जरूरी है सर, पानी की भी बचत करना बहुत जरूरी है।
0: जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि गर्मियों में इंसानों के साथ साथ जानवर भी बहुत उलझते हैं गर्मियों के कारण। खासकर हम चिड़ियों को देखते हैं कि उनको इतनी मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, तो उनकी अधिकतम बहुतों की मृत्यु भी हो जाती है। तो अपने घरों के आसपास जहां भी उपलब्ध हो थोड़ी सी पानी जानवरों को भी पिलाए तो उसमें बहुत ही लाभदायक होगी। आपको ऐसी सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदर जी। जी जी, तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप?
1: गाने को सुनिए सर, चिड़ियों को और उनको दाना भी जरूर दे चिड़िया लोग को।
0: जी जी जी जी जरूर,
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है निकाह
0: जी,
1: और गीत की बोल है चेहरा छुपा लिया किसी जनाब ने, गायक महेंद्र कपूर, आशा भोसले या शर्मा आगा, ये राज बब्बर शर्मा आगा जी का फिल्म का गाना। सबसे पहले गीत आपको श्रोता को आकाशवाणी लय में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आकाशवाणी लय में सभी उद्घोषक भाई बहनों को, हेलो एक्टर रेडियो ग्रुप के जुड़े श्रोताओं को, सभी को डेडिकेट करता हूं।
0: धन्यवाद। इसके साथ साथ आप किसी अपने दोस्तों के नाम लेना चाहोगे?
1: सर मैं सबका नाम ले लिए सर, पूरे भारत राज्य के श्रोताओं को सर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint

जय हिंद फौज भाइयों, फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म से ये गीत, अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

आइए अब सुनते हैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से ये गीत। के की आवाज़ में गीतकार शंकर एहसान लॉय और संगीतकार जावेद अख्तर।

0: मत कनेक्शन फिल्म से गीत सुन रहे थे। आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ों में, गीतकार सईद कादरी और संगीतकार प्रीतम।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat.
0: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कोई मिल गया फिल्म से ये गीत, उदित नारायण और चित्रा की आवाज़ों में, गीतकार इब्राहिम अश्क और संगीतकार राजेश रोशन।

अभी आप मन फिल्म से गीत सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार समीर और संगीतकार संजीव दर्शन। आइए अब सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से गीत के की आवाज़ में गीतकार और संगीतकार विशाल शेखर।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: ngaje akashwani le ne juin jik dain kasata tusso tsapi ke sing ne ladakh sana na sultan delshat sanajat
1: वाईडीए लेतंग वाईडीए रुपशे टाड़ी गेका शास जिगमित इशे दोर्जे खानपो छोगे उठी देनांगा तलतन मीमांसकुन कोर्जोक लो रिंजन जुंगदान फुगे नाजा लाखेरा जाची सिनोक छिलजा मेचेस निशुर संगे जागा लेने कोर्जोक लो रिंजन जुंगदान फुगा लेपचे सिनोक छिलजा मेचेस निशुर सारुक छिशुई जागा स्नातोगा रियो संगजोत यांग ते जागा तलतन मीमांसला शास जिगमित इशे दोर्जे खानपो छोगे छपक मेदे वांगतांग जांगचो दे लुंगसाला जाची सिनोक छिलजा मेचेस निशुर सब्दो ने जागा लो रिंजन जुंगदान फुगने चुमुरे गोनपा नाजल जाते कोर्जो गोनपा खेरचे सेनोक फितोगा कोर्जो गोनपा शोत्सोक फुलचे सेनोक यांग मेचेस निशुर सब्या दे जागा स्नातोगा थुकजे गोनपा नाजल जाते लिया लोक्सते क्योंचे सेनोक नाजला स्क्योदो द्योतखन गोने मेचेस निशु ने फारला हिमिस स्कारे लब्रांगे वाईडीए ऑफिस ला पासपोर्ट साइज से डापर निस नमस्ते स्क्यो राजात गोस्तेनोक इरिंग्स ला स्क्यालडेन तंग दोन थंग थेते मी रेरे काने पेने किरमोस तोंग टुक लेंचे सेनोक

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: Dasan yezhang tsiring norzome selkane lurik sanazats ngaje akashvani lene juinjik tangin pito chuchot tuntang skarma jipchu charuk kasata akashvani Srinagar ne urdina nasultang tapsara sanazat
1: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। जम्मू में लू से बचने की खातिर आवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
1: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें।
0: समाज के बुजुर्ग तबके को दीगर तिब्बी मसाइल के साथ साथ बाज़ोकात बेकाबू ब्लड प्रेशर का भी मसला दरपेश रहता है, जिसके लिए उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बात की मजीद वजाहत कर रहे हैं बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम।
2: रिसर्च कहता है कि हर 4 बुजुर्ग अफराद में सिर्फ 1 का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बगैर किसी वाजे अलामत के दिमाग, दिल, गुर्दों और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर यानी 140/90 से ज्यादा स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और याददाश्त की कमजोरी का सबब बन सकता है। रोजाना ब्लड प्रेशर चेक करना, दवा वक्त पर लेना, नमक कम खाना, वॉक करना और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना बहुत जरूरी है।
0: आकाशवाणी श्रीनगर के एक साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अशरफ भट्ट आज सुबह ब्राह्मणपुरा श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 76 बरस थी और उन्होंने 37 बरसों तक आकाशवाणी श्रीनगर में अपने फराइज अंजाम दिए। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह गुरविंदर सिंह और स्टेशन के दीगर अमले ने भी उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोमवार कुंभी के साथ ताजियत की है। साबिक ब्रॉडकास्टर अब्दुलरहमान भट्ट ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिलदार ने मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के पूरे अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। दूरदर्शन के साबिक एडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी ने मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए इन अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया।
3: मेरे साथी एक बहुत ही पुरखलूस शख्स थे और जो काम करते थे वो लगन से करते थे, मेहनत से करते थे, बहुत ईमानदारी से करते थे। इनके साथ एक फैमिली रिलेशंस भी रही हैं, क्योंकि रेडियो कॉलोनी में जिस क्वार्टर में रहते थे, नीचे वाले क्वार्टर में रहता था, ऊपर वाले क्वार्टर में रहते थे। और दूसरा एक रिलेशन भी बनता था, इनके बच्चे मेरे बच्चों के बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं और हर दुख सुख में मेरे साथ रहते थे। तो ये इनका जो इंतकाल है ये पूरी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान।
0: आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक एडीजी बशीर आरिफ ने मरहूम को इन अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया।
4: मोहम्मद अशरफ भट्ट एक तो वो खुददार आदमी थे बहुत, दूसरा वो ट्रबल शूटर से कोई भी काम रहे दफ्तर का खास तौर से या किसी का जाती काम, वो पेश पेश रहते थे। मैंने कभी उनको किसी को सताते हुए, किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा दफ्तर में या दफ्तर से बाहर। हमेशा दूसरों की मदद और जो भी काम उनको सौंपा गया, मेरे साथ उन्होंने काम किया कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में, बड़े पुरखलूस शख्सियत थे और काम जानते थे अपने ब्रॉडकास्टिंग का। दूसरा किससे किस तरह से पेश आना ये भी उनका खासा था, अल्लाह उनकी मगफिरत करे।
0: मरहूम का रस्म चारम 24 मई सुबह 10:30 बजे उनके आबाई मकबरा वाका जियारत सईद मंसूर जालदकर में अंजाम दी जाएगी। बुलंद पाया वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह का 661वां उर्स मुबारक कल नहायत ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी जियारत गवा का खान कहीं मोहल्ला श्रीनगर में दुरूद असगार और खत्मतुल मौजूमात की मजालिस जारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई दीगर लीडरों ने भी इस उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी के इल्मी और रूहानी कमालात से जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा इस्लाम के नूर से मुनवर हुआ। जमीयत हमदानिया के सरबरा मीर वाइस मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी उर्स शाही हमदान के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस तालुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
5: पीछे हमारा जून महीने में जो स्कीम आया था मिशन युवा का, उसमें हमने 25,000 लोगों को ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे लोन्स पे हमने दिए हैं। बेसिकली हम काम ही कर रहे हैं इस एरिया में सबसे ज्यादा, तो हमारा कोई ऐसे हमारा परहेज नहीं है कि किसी भी सेक्टर में बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी हमारा सेम बिहेवियर रहता है, उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने बैंक में। उसी तरह से छोटे लोन्स डेफिनेटली हम करते हैं। एमएसएमई का जो पोर्टफोलियो हुआ हमारा 20-22 हजार करोड़ का है।
0: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज नमाज जुमा आसार शरीफ दरगाह हज़रतबल में अदा की और वहां आलमी इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए दुआ की। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने सिदरा जम्मू में हवाई इनहदामी कार्रवाई पर तश्वीश का इजहार किया। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर मुकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तूते आफ्ताब सुबह 5:24 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:31 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
6: आदाब। आज का तबसिरा लेकर मैं नूर सबा। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबी फहरिस्तों की ताज़ा नजरसानी और 72 लाख से जायद वोटरों की शमूलियत दरअसल जमहूरियत की जड़ों को मजीद मजबूत बनाने की एक अहम पेशरफ्त है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक इस मरतबा तकरीबन 3.5 लाख नए वोटरों का इंदराज अमल में आया, जिससे वाजह होता है कि अवाम खसूस नौजवान नस्ल जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मजमूई वोटरों में तकरीबन 36 लाख मर्द, 35 लाख से जायद खवातीन जबकि 100 से ज्यादा थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। गांव की सतह पर कायम पंचायती इदारे किसी भी जमहूरी निजाम की बुनियाद तस्वर किए जाते हैं क्योंकि यही इदारे आवाम को बराह रास्त फैसला साजी के अमल में शरीक करते हैं। जब गांव का आम शहरी अपने इलाके के मसाइल जरूरियात और तरक्याती तरजीहत के तयन में शामिल होता है तो तरक्की का अमल ज्यादा मौसर शिफाफ और अवामी उमंगों के मुताबिक बनता है। रियासी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंचायत इंतखाबी फहरिस्तों की कामयाब तकमील इस बात की अलामत है कि अवाम में जमहूरी शऊर बेदार हो रहा है। खास तौर पर नौजवान की बड़ी तादाद का बतौर वोटर इंदराज ये जाहिर करता है कि नई नस्ल अपने मुस्तकबिल और अपने इलाकों की तामीर और तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करना चाहती है। ये रुझान न सिर्फ जमहूरी इदारों को मजबूत बनाना है बल्कि समाजी और सियासी बेदारी को भी फरोग देता है। पंचायती निजाम की असल रूह अवामी मुशावरत है। गाँव की सड़कें, पानी, बिजली, सेहत मराकज, तालीमी सहूलियात और रोजगार से मुतालिक मंसूबे उस वक्त ज्यादा कामयाब होते हैं जब उनकी मंसूबाबंदी मकामी लोगों की राय और जरूरियात को सामने रखकर की जाए। मकामी सतह पर मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाकों के मसाइल से बखूबी वाकिफ होते हैं, इसलिए वो बेहतर अंदाज में तरजीहात का तायुन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर जैसे खिते में जहां देही आबादी की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात की मुतलाशी है, पंचायती इदारों का फाल होना और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। अगर पंचायतों को मौसर इख्तियारात, वसाइल और अवामी तावुन हासिल हो तो न सिर्फ बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। मजबूत पंचायतें ही मजबूत देहात और मजबूत जमहूरियत की बुनियाद बनती है। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
7: ngaje akashwani lene jwin jik tangin chane chu chot gyat charuk kasata junuguni fia dikrim sanachat dikrim phulkan sonam dolma tang rikzinang mo yang dikrim kotik chat kan lobsang nam kyal

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission. Information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

0: dagsang jirange lobzang chorol tang chopa gune salkane lurik sanazats nga ji akashwani le ne juin jik tang in chane chu chod gya tang skarma jip chu janga charu kasata akashwani dilli ne samachar sandhya news at 9 yang testing ne urdina nasul sanazat
1: sandhya ke sath main lavlin nigam भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया भारत ने बाढ़ टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी अब समाचार विस्तार से भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग

0: और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुबरुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुबरुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुबरुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुबरुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक़ वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शिरकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारत और कुबरुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुबरुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौ तकरर शुदा नौजवानों को तकररी के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिससे वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौाक पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के अज़्म की तकमील की जानिब एक कदम है। रोजगार मेला नौजवानों को बामाने मौाक फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहा है ताकि वो बाख्तियार हो सकें और मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सकें। अपने आगाज के वक्त से मुल्क भर में मुनक़िदा 18 रोजगार मेलों के जरिए तकरीबन 20 लाख तकरूरियों के खतूत जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मकामात पर मुनक़िद होगा। 9 तकरूर शुदा उम्मीदवार जिन्हें मुल्क भर से मुंतखब किया गया है मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को ज्वाइन करेंगे जिनमें रेलवे, दाखिली उमूर, सेहत और खानदानी बहबूद और आला तालीम के महकमे के अलावा दीगर कई दूसरे महकमे शामिल होंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना देगी जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। जनाब शाह नई दिल्ली में आज सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के इन्वेस्टिचर तकरीब और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत तमाम नौयत की टेक्नोलॉजियों को मरबूत करके अगले बरस तक सरहदों की सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रिड तामीर करने की जानिब काम जारी है जिस पर हमला करके कामयाबी हासिल कर पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि वजारत जल्द ही स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराएगी जो ड्रोन्स, रेडार्स, जदीद तरीन कैमरों और दीगर नई टेक्नोलॉजियों से लैस होगा। वजीर दाखिला ने बताया कि जैसे ही इस स्कीम का आगाज होगा सरहदी हिफाजती फोर्स का काम खातिर खा हद तक आसान और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साइबर खतरात, हाइब्रिड नौयत के जंगी सामान और ड्रोन से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के लिए नई हिकमत अमली को अपनाना लाजमी है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: वजीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज्म है कि वो न सिर्फ दरांदाजी को रोके बल्कि दरांदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि ये आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश भारत की कलेदी दिफाई तैयारी में एक और संगे मील की अलामत है और मुल्क की कम अज कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत पर एतमाद को मजीद तकवीत देती है। अग्नि 1 मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में ही तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को BCG, टेटनिस और डिफ्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज़्म का इआदा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई NHAI के अहद की अक्कासी करता है जहाँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का तआवुन करेंगे। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज़राए खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर व खोज करेंगे। وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نورلان یرمبکائیف کے ساتھ ملاقات کی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اقدامات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی معاملات پر بھی بات چیت کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں برکس ینگ ڈپلومیٹک فورم اور سفارتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے استحکام، اختراع، تعاون، پائیداری اور عالمی پیش رفت میں شراکت داری کے برکس کے موضوعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے آج نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں ایک اور اہم ملزم کو گرفتار کیا ہے. ملزم کا نام منیشا سنجے حوالدار ہے اور یہ مہاراشٹر کے شہر پونے کے سیٹ ہیرا لال سراف پرشالا میں کام کر رہی ہے. سی بی آئی نے بتایا کہ یہ نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے عمل میں شامل رہی ہے اور اسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایکسپرٹ کے طور پر مقرر کیا تھا. جانچ ایجنسی نے بتایا کہ ملزم کو فزکس کے سوال نامے تک مکمل رسائی حاصل تھی. سی بی آئی نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے فزکس مضمون سے متعلق کچھ سوالات ساتھی ملزم منیشا مندھارے کو شیئر کیے تھے جسے اس مہینے کے 16 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے. اس سے پہلے جوابی پرچوں کی کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ کل تک تھی. حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے بجلی کی کھپت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے. بجلی کی وزارت نے کہا کہ کل دن کے وقت بجلی کی سب سے زیادہ کھپت 270.82 گیگا واٹ رہی جس نے اپنے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے اہم وزارتوں اور سرکردہ صنعتی ایسوسی ایشنوں کے اہلکاروں کے ساتھ آج ایک میٹنگ کی صدارت کی جس کا مقصد ملک میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی غرض سے حکمت عملی طے کرنا تھا. سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں جناب گوئل نے بتایا کہ حکومت صنعت کے ساتھ گہرے روابط کے ساتھ کام کرنے کے تئیں پرعزم ہے. بھارت کے دو کوہ پیما ارون کمار تیواری اور سندیپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کی چڑھائی سے اترتے وقت اپنی جان گنوا بیٹھے. نیپال کے سیاحت کے محکمے کے حکام نے بتایا کہ یہ دونوں دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی سر کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے. بتایا جاتا ہے کہ ارون اور سندیپ چوٹی سے نیچے آتے وقت بہت تھک چکے تھے اور گائیڈ کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا. منی پور میں آسام رائفلز نے کل اور آج برادریوں تک رسائی کی سلسلہ وار آؤٹ ریچ پہل کا انعقاد کیا. ان سرگرمیوں کا مقصد نوجوانوں کو تعلیم کو اپنانے، کیریئر کے انتخاب سے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے اور سبھی شرکا کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی تحریک دینا تھا. حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں جاری آئی پی ایل کرکٹ میچ میں میزبان سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے 256 رن کا نشانہ دیا ہے. اس سے پہلے سن رائزرز حیدرآباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور قبرص نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے. دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے. دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں. حکومت سمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دیا جائے جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو. بھارت نے اوڈیشا کے چاندی پور میں مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی 1 کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی ہے. بھارت نے افغانستان میں ٹیکوں سے متعلق 20 ٹن اہم ترین ساز و سامان روانہ کیا ہے تاکہ بچوں کی ٹیکہ کاری کے پروگرام کو مضبوط بنایا جا سکے. کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ جاری ہے. اس میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے سن رائزرز حیدرآباد نے 256 رن کا نشانہ دیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
4: ناجے آکاشوانی لینے جو انجک تائن سنے چھوچوت رکو دنسکرما سمچو چھاروک کسطا چمبا چھونڈول تنگ ٹھوپا گونے سلکانے جنگلوریک سنجات.

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर